0: यतै तपुआ मादे मारने दे काटी
1: ना आता छा सापन कुछ नहीं कराई सम सांप कुछ नहीं करता लिया वो अपने चल गए था कुछ कराई था वो सब कुछ सांप बिखा थे नहीं रहता
0: बिखा हो कि नहीं हो कसी कसी ना तो दाई
2: लिया नेपाल में पाँच दिन आप बिखा सांपन का विषय मसून एक थोड़ा ठह गरे जा जो उन खास कह कर रातिक समय में घर भीतर बैठा सेक्टर ये कटला से निबटाई फिर क्या कर तारा कटला पास है देह भाग जो निचलना कह कर सांस फेर जो निशेकना में से लक्का हुई सेक्टर और रठह डोम जो उन बड़ा रिशाह में रिक रठह इनकर फाँट फूले था डोम सांप दिन व रात दोनों में देख पड़ना वो खास कह कर संजय बिहान देख पड़ता इनकर कटला से फिर लक्का हुई सेक्टर वो और रठह कैदी जाटक सांप इनकर कटला कला से कटला भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बैठे था रकत से पाची होकर रकत बहना हुई से था उसने कहा हमारे देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगो अपने न फुनकारना बाधे सांप ई सांप दस लाख बेरहमेन कम केल पा दे था तर हिंकर न कटाई एकदम खतरनाक रहा
3: बरखा छा को अनाज बिक्री न समय में सापन का कटाई अथवा दसाई का घटना ढीर बिना कर था बहिया वो और प्राकृतिक प्रकोप के कारण सापन का बछारा ना सीधे सापन का दसाई का घटना ढीर बिना कर लग पा जाए
4: झूर जसिन सापन का दसाई हानिकारक नहीं रहा वह फिर यदि सपा दस डारल कल से तुरंत लगभग उपचार केंद्र में जा जाए पर
1: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाख और लगभग उपचार केंद्र कहाँ बा कैसा पट्टा लगाए लाख आधिकारिक वेबपेज स्नेक बाइट नेपाल .org में जाकर आवश्यक जानकारी लिए सकते था
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टिकापुर कैलालीको बन्द सत्र हुने बारेको सूचना टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभामा विधान बमोजिमको गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिलको मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल मिति 2083 साल जेठ 14 गते समय बिहान 8 बजे स्थान टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल
7: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय कक्षा 11 मा वाणिज्य संकायमा भर्ना खुल्यो
8: यस क्षेत्रकै अग्रणी तथा गुणस्तरीय शैक्षिक संस्था युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालयमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 अन्तर्गत वाणिज्य संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुला गरिएको बेहोरा सम्पूर्ण विद्यार्थी अभिभावक तथा शुभेच्छुक महानुभावहरूमा जानकारी गराइन्छ। विद्यालयमा अंग्रेजी तथा नेपाली दुवै माध्यमबाट अनुभवी तथा दक्ष शिक्षकद्वारा आधुनिक प्रविधि मैत्री र व्यावहारिक शिक्षण प्रणाली अन्तर्गत अध्ययन अध्यापन गराइनेछ।
7: पढाइ हुने विषयहरू अनिवार्य नेपाली, अनिवार्य अंग्रेजी, सामाजिक गणित, ऐच्छिक लेखाशास्त्र, ऐच्छिक वित्तशास्त्र, ऐच्छिक अर्थशास्त्र, कम्प्युटर विज्ञान, भर्ना सम्बन्धी कार्यक्रमहरू,
8: भर्ना फारम वितरण जेठ 1 गतेदेखि,
7: भर्ना सुरु जेठ 3 गतेदेखि,
8: कक्षा सञ्चालन जेठ 25 गतेदेखि,
7: पठन पाठन समय बिहान 6 बजेदेखि 10:30 बजेसम्म।
8: दक्ष अनुभवी तथा विषयगत विशेषज्ञ शिक्षकद्वारा सहजीकरण गराइनेछ।
7: स्मार्ट क्लासरूम तथा डिजिटल लर्निङ सिस्टमको व्यवस्था,
8: विद्यार्थी मैत्री, शान्त तथा सुरक्षित शैक्षिक वातावरण,
7: नियमित युनिट टेस्ट, विकली टेस्ट तथा मोडेल इक्जाम सञ्चालन गरिनेछ।
8: कमजोर विद्यार्थीका लागि विशेष सुधारात्मक कक्षाको व्यवस्था,
7: उत्कृष्ट विद्यार्थीलाई मासिक तथा वार्षिक पुरस्कारको व्यवस्था,
8: समय अनुसार प्र्याक्टिकल प्रेजेन्टेसन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निङमा विशेष जोड,
7: आधुनिक कम्प्युटर ल्याब तथा इन्टरनेट सुविधा सहितको अध्ययन व्यवस्था,
8: अनुभवी करियर काउन्सिलर द्वारा भविष्य निर्माण सम्बन्धी मार्गदर्शन,
7: नेतृत्व विकास, व्यक्तित्व विकास तथा सार्वजनिक बोल्ने कला सम्बन्धी तालिम,
8: अनुशासन, नैतिक शिक्षा तथा सकारात्मक सोचको विकासमा विशेष प्राथमिकता,
7: अतिरिक्त क्रियाकलाप द्वारा विद्यार्थीको प्रतिभा प्रस्फुटन गराइने,
8: विज्ञान प्रविधि तथा व्यवस्थापन क्षेत्रसँग सम्बन्धित शैक्षिक भ्रमणको व्यवस्था,
7: सीसीटीभी निगरानी सहित सुरक्षित तथा व्यवस्थित विद्यालय वातावरण,
8: अभिभावक र विद्यालय बीच नियमित समन्वय तथा प्रगति प्रतिवेदनको व्यवस्था,
7: सीमित सिट भएकाले समयमै भर्ना सुनिश्चित गर्न अनुरोध गरिन्छ,
8: हाई डिग्री अफ डिसिप्लिन एण्ड एकाडेमिक इन्भाइरोमेन्ट भएको।
7: थप जानकारीका लागि 091-560-738, 091-561-446, 98-48-43-31-79 र 98-48-43-36-77
8: युनाइटेड एकाडेमी माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली।

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सेलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
0: हो र हो नि इन्सेलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाइ लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: आइहो बड्डो घर कहिया सिर्जै भो पाछा से सुरु करल मने घर सिज्जा सेक्ल
5: अरे का करुरी बुढिया कठुवा खोजत खोजत परेशान हो गिल बाटु मिल्बो मिल्बो नि करत का कैन हो का
4: मिस्तरान वर्जन उकन घर हेरो न पट्टा सुगुर बनैल बाट अल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो न ओट्रफे पटानी हुइन कि गोंगुआ बुढो हो न कबु कहुँ र घुम जाए त था पाए
6: यूपीवीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुलक मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे
7: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426

0: के तपाईलाई थाहा छ,
1: एउटा प्लास्टिक झोला नष्ट हुन सयौं वर्ष लाग्छ। फालिएको प्लास्टिकले नदी, माटो, वनस्पति, जनावर र मानिसलाई असर गर्छ।
0: हो र?
1: हो त, हामीले तिनै प्रदूषणमा हुर्किएका विषाक्त वस्तुहरू खान्छौ, प्लास्टिकमा बोकेका झोल पदार्थ उपभोग गर्छौ,
0: अनि
1: खानासँगै प्लास्टिक जन्य पदार्थ पेटमा जान लागेकाले क्यान्सर जस्ता प्राणघातक रोगहरू लाग्न थालेका छन्। प्लास्टिक खानबाट जोगिन यसको विकल्प रोजौ।
0: के छ त विकल्प?
1: सामान बोक्दा कपडाको झोला प्रयोग गरौं, पकाएको तथा झोल खाने कुराहरू प्लास्टिकबाट टाढै राखौं।
0: विस्तारै गर्दा हुँदैन?
1: अहँ, हुँदैन। टिकापुर नगरपालिकाले साउन 1 गतेबाट प्लास्टिकको झोला प्रयोगमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ।
0: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ।
1: प्लास्टिक हटाऊ, पृथ्वी बचाऊ। टिकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय सरसफाई शाखा टिकापुर कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छू।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ये पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाएं।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला, झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड कापुर। फोन नंबर 98600 71024 ओ 98046 77417।

0: कबू कापी रही था कबू पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आजी था का कना हो बाबा फिर उस टपाटी गटीलो ठाउं से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जरम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाउं से झोला लाना नहीं चिकटो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बहुत कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उडोक मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुरहक ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकट हुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484-22373
3: भरना खुले हो।
4: यस सामुदायिक स्वास्थ्य इंस्टिट्यूट टीकापुर कैलाली में सामान्य चिकित्सा SA कार्यक्रम अध्ययन को लागि भरना खुले हो।
3: फारम भरने मिति 2083 वैशाख 29 गते देखि जेठ 13 गते सम्म
4: अनलाइन फारम सम्बन्धमा पढ्न इच्छुक विद्यार्थीहरूले यस सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टिकापुरे कैलालीमा आएर सहयोग लिई फारम भर्न सक्नुहुनेछ अथवा www.ctevtexam.org.np मा उपलब्ध गराइएको ITMS अनलाइनमा भरि सबमिट गर्नुपर्नेछ
3: सामुदायिक क्याम्पस भएकोले यस कार्यक्रममा ₹3,23,200 शुल्कमा मात्र अध्ययन गराइन्छ
4: आफ्नै सुविधा सम्पन्न भवन भएको व्यवस्थित प्रयोगशाला र विषय विशेषज्ञद्वारा कक्षा सञ्चालन गरिन्छ
3: आवेदन फारम शुल्क ₹1,000 लाग्नेछ
4: फारम भर्दा आवश्यक पर्ने कागजातहरू
3: SEE, SLC वा प्राविधिक SLC को शैक्षिक योग्यताको प्रमाण पत्रको प्रतिलिपि नागरिकता वा जन्म दर्ता लक्षित वर्गमा फारम भर्नु परेमा आफ्नो वर्ग खुल्ने प्रमाण पत्र र स्पष्ट मुखाकृत देखिने हालसालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
4: नोट सामान्य चिकित्सा HA अध्ययन गर्नको लागि न्यूनतम 2 GPA हुनुपर्नेछ सामुदायिक स्वास्थ्य इन्स्टिच्युट टीकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 091-560-203 98-58-48-709 98-48-67-86 र 98-45-45-39

0: पालिकाको कार्यालय टिकापुर कैलाली। बाबु ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
1: मैं नहीं जाइस, वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल छु।
0: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
1: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
3: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाग खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
2: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
3: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417।
4: ए दाई ए दाई, पख्नुस त पख्नुस, के गर्नु भएको
5: ले देख्नु भएन? औषधि हालेको
4: लौन सरी ढाक्ने कपडा मास्क पन्जा खोइ यत्तिकै बोट बिरुवामा बिसाल्ने
5: एकै छिन् त हो नि, धेरै बेर होइन, खोइ अहिलेसम्म केही भएको छैन।
4: हेर्नुहोस् दाई, यसरी बाली नालीमा विषादीको प्रयोग गर्दा प्रयोगकर्ता र उपभोक्ता दुवैलाई जोखिम हुन्छ। तत्काल विषादीले किरा मारे पनि अन्तत मानिस जीव जन्तु माटो पानी र समग्र वातावरणमा गम्भीर असर पुर्याउँछ। विषादी हालेको खानेकुरा खाँदा हामीलाई गम्भीर खालका रोग लाग्न सक्छ।
5: विषादीले धेरै नै जोखिम हुन्छ है क्या हो नानी?
4: हो नि, रासायनिक विषादी प्रयोग गर्ने र प्रयोग गरेको फलफूल तरकारी खानेलाई रिङ्गटा लाग्ने टाउको दुख्ने मूर्छा पर्ने थकान महसुस हुने र होस हराउने जस्ता तात्कालीन र क्यान्सर ट्युमर तथा श्वास प्रश्वास सम्बन्धी दीर्घकालीन समस्याहरू देखिन सक्छ।
5: ए अनि नानी, विषादी प्रयोग नगरे अन्नबाली नै हुँदैन, किरा लाग्छ हाल्नु त पर्यो नि।
4: सुन्नुहोस् दाई, रासायनिक विषादीको सट्टा जैविक तथा परम्परागत विषादीको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका धेरै विधिहरू छन्। यसले त तपाई तपाईँको परिवार र उपभोक्ता समेतलाई गम्भीर असर पुर्याउँछ।
5: हस् नानी, मैले बुझे, म परम्परागत विषादी नै प्रयोग गर्छु।
6: नेपाल सरकार विज्ञापन बोर्ड।

0: सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएमके बिहान के 9 बजे थारू भाषक खोज खबर में यहां स्वागत बा। खोज खबर से रतन चौधरी के राम राम। अब अपने खुकरे सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ट्ज के संगे ऑनलाइन में www.tikapurfm.org मोबाइल एप हाम्रो पात्रो नेपाली पात्रो में फिर सुनते रहल बाटी। खोज खबर शुरू करी खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक से। कोलेस्ट्रोल व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में नीरबहादुर शाह निर्विरोध निर्वाचित, निर्वाचन स्थगित। कैलाली के किसान हुक्र बहुबाली समेत खेती पर आकर्षित, 2-3 बाली संगे लगा के आमदानी लेती किसान। शिवशक्ति पातावार सामुदायिक वनोपभोक्ता समूह के आम भेला ओराइल संकलित कठुआ लामी के विषय में छलफल। सरकार से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। आप पूरा खबर। रानी जमरा कुलरिया सिंचाई अंतर्गत के बनलसीट भंडार गृह संचालन तथा व्यवस्थापन समिति के अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हो सकल बाटे। जेठ 10 गते हुई पहल साधारण सभा पाछे के निर्वाचन कार्यक्रम में उम्मेदवारी ढेल मध्य कुछ सहमति के आधार में उम्मेदवारी फिरता लेहल बाछे अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुई बाटे। अध्यक्ष के उम्मेदवारी ढेल कृष्ण प्रसाद बजगाई उम्मेदवारी फिरता लेहल पाछे नीरबहादुर शाह निर्विरोध निर्वाचित हुई के हों। सचिव के उम्मेदवारी ढेलक दिनेश कुमार थारू हो। हेमनाथ उपाध्याय के उम्मेदवारी फिरता हुई पाछे धनीराम चौधरी निर्विरोध निर्वाचित हुई बाटे। उत्तर के सहसचिव में एकजन केकेल उम्मेदवारी पर्लक ओरसे मुकेश बहादुर शाह निर्विरोध निर्वाचित हुई के हों। उसका दुई खुला सदस्य पद में उम्मेदवारी देलक अमर बहादुर पुनो विष्णु बहादुर रोकाया के उम्मेदवारी फिरता हुई पाछे धर्मराज तिमिल सेनाओ सिद्धराज ठकुला निर्विरोध निर्वाचित हुई बाटे। दलित सदस्य पद में थीरज दास के उम्मेदवारी फिरता लेहल पाछे जंग बहादुर लोहार निर्वाचित हुई के हों। महिला सदस्य में 3 जहन पद केलक उम्मेदवारी देलक अनिता कुमारी चौधरी के उम्मेदवारी फिरता लेहल पाछे सोमती कुमारी चौधरी दिलू घरती मगरो सीता दंगौरा निर्विरोध निर्वाचित हुई के हों। उपाध्यक्ष पद में चतुर प्रसाद खनालो संगम शाह के उम्मेदवारी परलवा कलसे कोषाध्यक्ष पद में जनक कुमारी चौधरी और हीरा देवी चौधरी के उम्मेदवारी रहलबा। अध्यक्ष सहित के अधिकांश पदाधिकारी निर्विरोध निर्वाचित हुईलक। उपाध्यक्ष और कोषाध्यक्ष पद के लक्केल निर्वाचन समेत नहीं हुईना हो। निर्वाचन अनिश्चित काल के लग स्थगित करल निर्वाचन समिति के सदस्य परशुराम महतो जानकारी दिले बाटे। कैलाली के किसान बहुबाली खेती में आकर्षित हुई बाटे। केरा खेती कर या किसान हुकरा केरा खेती संगे मकई मिर्चा ओसक लाही लगायत के खेती करते रहल बाटे। टीकापुर 4 बाघमारा के केरा किसान टेकेन्द्र धामी केरा खेती भीतर मकई खेती करल बाटे। ओसक धामी ई वर्ष मकई के समय 2 बाली लेने तैयारी करते बाटे। केरा खेती में बार बार उत्पादन समेत लेलक मकई बेचना टेकेन्द्र के समेत बारी में बेचके फिर से दूसरो लट के मकई तैयार हो सकल बा। 6.5 बीघा जगह में केरा खेती संगे मकई खेती करल बाटे। एक पटक लाखों के मकई उत्पादन कर सकल धामी बारी में फिर से मकई तैयार हुई थी बाटिन। लम्बा समय से लेके 21 बीघा खेतवा में केरा खेती करते रहक धामी गैल वर्षा फिर समेत केरा भीतर मिर्चा उस्तक लाही खेती कर रहें। केरा खेती करते रहल धामी विगत में कर्जिना केरा खेती के समय में अब परिवर्तन आयल बटोले बाटे। विगत में असार में केरा लगेना धामी 2 वर्ष से मंगसिर के आधा में समेत जमीन में केरा लगाईदी शुरू कर लाटे। टीकापुर 5 पहाड़ीपुर के किसान शेरबहादुर सावत फे गैल वर्षा असार में केरा लगाए रहें। केरा खेतवा के बीच में समेत असार महीना में वहां मकई लाही खेती समेत करल रहें। बेमौसमी मकई तैयार हुई पाछे मजा फायदा हुई वहां के कहाबा। वहां के बारी में आब्बा फे केरा फे मजा फस्तैते बाटिन बहुबाली खेती कलक नई अक्केठो जमीन में अक्के समय में दुई वा दुई से ढेर बाली लगेना प्रविधि हो। बहुबाली खेती से किसान उकरण दोहरो आमदानी देहना किसान उकरण आकर्षित करते बा एक्केठो खेतवा में मुख्य नगदे बाली संगे और तरकारी अन्न बाली लगेना जग्गा के समेत अधिकतम उपयोग हुईतिरला उत्पादन में विविधता हो आमदानी बढ़ना कृषक उक्र बतैती बाटे। खोज खबर में एक घड़ी विश्राम पासे फिर से भी सुनतिरा भी सामुदायिक रेडियो टीकापुर एफएम
1: महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय कंचनपुर को विद्यार्थी भर्ना संबंधी सूचना
2: सीटीभीटी बाट सम्बन्धन प्राप्त महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुरमा न्यूनतम शुल्कमा प्राविधिक स्वास्थ्य कार्यक्रमहरू अध्यापन गराउन शैक्षिक सत्र 2083-84 का लागि 3 वर्षे प्रमाणपत्र तह मेडिकल ल्याब टेक्नोलोजी सीएमएलटी 30 जना सामान्य चिकित्सा एचए 40 जना नेत्र विज्ञान ओए 40 जना डिप्लोमा इन फार्मेसी डीपीएफ 40 जना विद्यार्थीहरूको अनलाइन फर्म खुलेको सहर्ष जानकारी गरिन्छ।
1: भर्ना कार्यक्रम
2: अनलाइन आवेदन फारम वितरण शुरू 29 गते देखि
1: अनलाइन आवेदन फारमको अन्तिम मिति जेठ 13 गते बुधबार
2: आवेदन फारम शुल्क ₹1000 मात्र अनलाइन आवेदन फारम www.ctvt.exam.org.np को ITMS मा भरी अनलाइन सबमिट गर्नुपर्नेछ। अनलाइन आवेदन फारम भर्नका लागि एसईएका कागज पत्र ल्याई शिक्षालयमा भर्न सकिनेछ।
1: आवश्यक कागज पत्रहरू
2: एसईई एसएलसी उत्तीर्ण गरेको शैक्षिक योग्यता सकलबाट स्क्यान गरिएको प्रति
1: जन्म दर्ता नेपाली नागरिकताको प्रमाण पत्र स्क्यान प्रतिलिपि
2: लक्षित वर्ग खुल्ने कागजातहरूको स्क्यान प्रतिलिपि
1: स्पष्ट मुखाकृति देखिने हाल सालै खिचिएको पासपोर्ट साइजको फोटो
2: कोटामा भर्नु पर्ने भएमा सो स्थानीय तहको सिफारिस
1: सम्पर्क स्थान महाकाली बहुप्राविधिक शिक्षालय महेन्द्र नगर कञ्चनपुर
2: सम्पर्क नम्बर 0959900044 9858700044 9847202740 9642833921 र 9669963520
3: के तपाईलाई किचन वायरिंग र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ? यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्।
4: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बञ्चरो हटब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ऱ्याक प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफत मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ। एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला। ग्रीष्मा टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588008
5: कर्णाली नमुना मावि टिकापुरमा शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 विभिन्न संकायमा भर्ना खुल्यो।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरमा विज्ञान र इन्जिनियरिङ संकायमा उत्कृष्ट नतिजा सँगै शैक्षिक सत्र 2083 का लागि कक्षा 11 कानून होटल म्यानेजमेन्ट मानविकी र शिक्षा संकायमा नयाँ विद्यार्थी भर्ना खुलेको सम्पूर्ण अभिभावक तथा विद्यार्थीहरूमा जानकारी गराइन्छ। सिट सीमित छ, आजै सम्पर्क गर्नुहोस्।
5: जेहेन्दार प्रवेश परीक्षामा उत्कृष्ट अङ्क ल्याउने विद्यार्थी र खेलाडीहरूका लागि विशेष छात्रवृत्तिको व्यवस्था रहेको छ।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुरका विशेषताहरू
5: फराकिला कक्षाहरू
6: विज्ञान तथा कम्प्युटर प्रयोगशाला भएको
5: पुस्तकालय तथा ई लाइब्रेरीको व्यवस्था भएको
6: खेलकुद सुविधा
5: कम्प्युटर शिक्षा
6: स्वच्छ पिउने पानी
5: क्यामेराको निगरानी र यातायातको सुविधा पनि छ।
6: कर्णाली नमुना माध्यमिक विद्यालय टिकापुर कैलाली सम्पर्क नम्बर 9854424167
5: तपाईको भविष्य निर्माणको एक सहयात्री।
7: टिकापुर नगरपालिकाको ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा सञ्चालन बारेको अत्यन्त जरुरी सूचना।
1: टिकापुर नगरपालिकाको आयोजनामा नगरपालिका भित्रका तपसिलका वडाहरूमा गर्भवती महिलाहरूका लागि निशुल्क ग्रामीण अल्ट्रासाउण्ड सेवा, भिडियो एक्सरे सेवा, तपसिलको स्थान, मिति र समयमा सञ्चालन हुने भएकोले सम्पूर्ण सरकारवालाहरूलाई सेवा लिन आउन हुन अनुरोध गरिन्छ। रामपुर शहरी स्वास्थ्य केन्द्र, वडा नम्बर 3, जेठ 12 गते, समय बिहान 10 बजेदेखि।
7: टिकापुर नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टिकापुर, कैलाली।
0: विश्राम पास फेर से स्वागत बा। सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा के कालिक बैठक में दुईठो विधेयक टेबल करगिल बा। प्रदेश सभा के आठौ अधिवेशन के दूसरा बैठक में सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर ओभलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास संबंध में व्यवस्था कर्न बनल विधेयक हो। टिकापुर में विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय के संबंध में व्यवस्था कर्न बनल विधेयक टेबल हुईल प्रदेश सभा सचिवालय से जनाइल बा। सामाजिक विकास मंत्री मेघराज खड़का से सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा नियमावली 2080 के नियम 107 के उपनियम 1 बमोजिम दोनों विधेयक प्रदेश सभा बैठक में टेबल करना हुआ। प्रदेश सरकार से टीकापुर में विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय विधेयक 2081 चैत 3 गते और बरघर तथा भलमनसा प्रथा संरक्षण विधेयक समेत जेठ 2 गते प्रदेश सभा सचिवालय में दर्ता करागिल रह। शिवशक्ति पाटाभार सामुदायिक बनुआ उपभोक्ता समूह के आम भेला ओराइलबा। सोमवार के हुई भेला से सामुदायिक बनुआ से खैर जात के सुखा तथा समेत ढलप पड़ा रूख कटानी तथा संकलन करल और यह बिक्री वितरण के लाख सहमति जुटैना आम भेला समेत करगिल सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष भीम बहादुर साउत बटोले बाटे। अध्यक्ष साउत से सामुदायिक बनुआ के अध्यक्ष मां समेत उपभोक्ता उपभोक्ताओं के हुईलक एक निगरानी और सुझाव फे देना आग्रह करले बाटे। आम भेला से यह संबोधन करती जानकी गांवपालिका वार्ड नंबर 9 के वाड़ाध्यक्ष खगेन्द्र भंडारी सामुदायिक बनुआ में हुई आमदानी है सही ठाव में सही रूप में लगानी करना आग्रह करती वाड़ा से फे सामुदायिक बनुआ है सहयोग करना बतौले बाटे। पार्टी के प्रतिनिधि के ओर से समेत बोलती नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी के प्रकाश विश्वकर्मा से सामुदायिक बनुआ मजा काम करती रलक बतोईती बनुआ से करल आमदानी के सदुपयोग करना सुझाव देले बाटे। राष्ट्रीय मावी पाटाभार के विद्यालय व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष ईश्वर सिंह ओर से सामुदायिक बनुआ के आमदानी कुछ भाग समेत विद्यालय में फे लगानी करला से मजा हुईना बतोईले बाटे। सब डिविजन वन कार्यालय टीकापुर के प्रमुख दिलीप कुमार यादव से सामुदायिक बनुआ ढेर प्रक्रिया पूरा करना बनुआ रलक ओर से खैर संकलन करके समेत करल बटोईती इहे लिलामी प्रक्रिया में लैजैना सुझाव देले बाटे। सामुदायिक बनुआ से वार्षिक कार्य योजना अनुसार 4,336.16 क्यूफिट तो बाकी रोग किरा लागल धरल पड़ल सुख खैर जात के 5,600 क्यूफिट काट संकलन हुई बताइल बा। भेला से कार्य समिति के पदाधिकारी उपसमिति उपभोक्ता तथा तमाम संघ संस्था के प्रतिनिधि राजनीतिक दलों और सरकार वाला हुकरन की उपस्थिति रह। 435 उपभोक्ता रलक शिवशक्ति पाटाभार सामुदायिक बनुआ में 378 हेक्टर क्षेत्रफल में फैलल बा। सामुदायिक बनुआ में साल सीसम खैर जमुन अस्तक अस्ना हल्दु कुसुम सिरिस बेदबास लगायत के वन पैदावार रहल बा। सरकार से आर्थिक वर्ष 2083-84 के लाख धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करल बा। कालिक मंत्रिपरिषद के बैठक से बरखे धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण करती मोटा धान 3,660 रूपया प्रति क्विंटल हो, मध्यम धान के 3,860 रूपया प्रति क्विंटल तोकना निर्णय करल बा। असी के बैठक से सहकारी में हुईलक बैठी राजभूज आयोग 2082 के प्रतिवेदन सार्वजनिक करदा निर्णय करल। सरकार के प्रवक्ता एवं शिक्षा तथा खेलकूद मंत्री सस्मित पोखरियाल जानकारी देले बाटे। बैठक से नेपाल चीन जोड़ना विद्युत प्रसारण लाइन आयोजना चिलीमे केरूंग कार्यान्वयन केलाक चीन सरकार हेसमेट पठैना प्रति उत्तर पत्र स्वीकृत करलबा स्थल नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण के महानिर्देशक सहसचिव मुकेश डंगल नियुक्त करगिलबा। खोजखबरमा एक घड़ी विश्राम विश्राम पाछे फेर सैबी सुन तिरबी सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम। टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालय टिकापुर कैलालीको बन्द सत्र हुने बारेको सूचना। टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको जेठ 9 गते छैठौं चुनावी साधारण सभामा विधान बमोजिमको गणपूरक संख्या अपुग रहेको हुँदा तपसिलको मिति स्थान र समयमा बन्द सत्र हुने भएकाले पुस्तकालयका आजीवन र संस्थागत सदस्यहरूलाई उपस्थितिका लागि हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। सभामा पेश हुने प्रस्तावहरू हाल विधानको धारा 27 को गणपूरक संख्या संशोधन सम्बन्धमा हाल विधानको कार्यसमिति गठनको दफा 16 को उपदफा 6 थप गर्ने सम्बन्धमा तपसिल मिति 2083 साल जेठ 14 गते समय बिहान 8 बजे स्थान टिकापुर सामुदायिक पुस्तकालयको सभा हल।

0: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वत बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनीष मेडिकल में जाइस तो?
3: मैले जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगड़के घर से बाहर नहीं निकल छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इग्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई।

जेकर प्रभाव से हाल गंडकी प्रदेश लगायत के देश के हिमालय और पहाड़ी भूभाग में साधारणतया मौसम बदलल बाकल से बाकी तराई भूभाग में मौसम मुख्यतया सफल रहल बा। गंडकी प्रदेश के ढेर स्थान में तथा कोसी बागमती प्रदेश के कुछ स्थान में समय चट्टांग सहित मध्यम वर्षा फैटी रहल बा। इसी के दोपहर के कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के हिमालय भूभाग में कुछ स्थान में मध्य प्रदेश लगायत के कोसी बागमती और गंडकी प्रदेश के तराई तथा लुम्बिनी उषक कर्णाली और पश्चिम प्रदेश के हिमालय पहाड़ी भूभाग के कुछ स्थान में चट्टांग सहित मध्यम वर्षा के संभावना रहला। साथ ही लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में एक दो स्थान में चट्टांग सहित हल्का वर्षा के संभावना रहला। सुरपश्चिम और लुम्बिनी प्रदेश के तराई भूभाग में तातुल दिन बिना संभावना रहलबा। मध्य प्रदेश लगायत के कोसी बागमती गंडकी प्रदेश के तराई भूभाग के कम स्थान में हवाहुरी के संभावना रहलबा। अत्याधिक गर्मी के कारण कंचनपुर की कृष्णपुर नगरपालिका और भीमदत्ता नगरपालिका भीतर संचालित सामुदायिक तथा निजी विद्यालय एक साता बंद करना कहलबा। विद्यार्थियों के स्वास्थ्य अवस्था मद्देनजर करती दोनों नगरपालिका से ऐसी निर्णय करल के हो। भीमदत्ता और कृष्णपुर नगरपालिका अटवार के सूचना जारी करती अत्याधिक गर्मी के कारण नगरपालिका अंतर्गत के सक्कू विद्यालय में जेठ 13 गते सम स्थानीय विदा दैगिल जानकारी करागिल बा। यह समाचार संगे खोज खबर ओराइल जैना से पहले खबर के मुख्य मुख्य शीर्षक फिर से। कोल्ड स्टोर व्यवस्थापन समिति के अध्यक्ष में नीरबहादुर शाह निर्विरोध निर्वाचित। कैलाली के किसान बहुबाली खेती में आकर्षित, दुई तीन बाली संगे लगा के आमदानी लेती। शिवशक्ति पाटाबार सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह के आम भेला ओराइल संकलित कठुआ लीलामी के विषय में छलफल। सरकार से धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारण। लिटा बकलक थारू भाषक खोज खबर अत्रै और समाचार 12 बजे मध्यान्ह खबर सुन सकबी। अब के खोज खबर से मई रतन चौधरी विदा हुई तू सामुदायिक रेडियो टीका प्रयाग सुनते विराम।

0: दोनों व्यक्ति है। लिंग, लैंगिकता, यौनिकता, सामाजिक भूमिका और शरीर के आधार में करल अन्याय, दमन, दुर्व्यवहार और नियंत्रण लैंगिक हिंसा हो।
1: कोट पेट, धक्का मुक्का, चोट पुगैना, गाली गलौज, धाक धमकी, अपमान कैना, जबरदस्ती, दुराचार, अवांछित स्पर्श, दबाव ओ शोषण, पैसा में नियंत्रण रखना, कौनो ठाव में पैसे नहीं देना, बोले नहीं देना जैसी गतिविधि से लैंगिक हिंसा के उदाहरण हुई था।
0: ऐसी गतिविधि कोई कैना ओ करैना कानूनी रूप में दंडनीय अपराध हो। तब मारे हिंसा देखले से ओ भोगले से मौन नहीं बैठबी। OCMC स्थानीय निकाय, सुरक्षित आवास गृह, महिला बाल बालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक सेवा केंद्र, महिला सेल में संपर्क करी।
1: अठवा पैसा नहीं लगना नंबर नेपाल प्रहरी के 100, महिला आयोग के 1145, बाल हेल्पलाइन नेपाल के 1098 नंबर में सीधा संपर्क करी। ओ सीधा अदालत में थे जय से जय।
0: हिंसा अपने फैनाई करी, यदि हुई देखले से हिंसा विरुद्ध खुल के आवाज उठाई। सुदूर पश्चिम प्रदेश सरकार, सामाजिक विकास मंत्रालय, महिला समुत्थान परियोजना, धनगढ़ी, कैलाली।
2: ए बा आई गई क्या? आज तो पहला नौकरी को पहला महीना तनखा खाई करना आए की होली मेरी चेली।
3: तनखा खाई करना हो बुआ, तनखा ले भोलि का दिन की धुक्का पारी करना आया किसु हो भाया बुआ। पहला महीना को तनखा पाने बित्तीकै मैले आफ्नो जीवन सुरक्षित बनाएकी छु। सिटिजन लाइफ नि त कसा राम्रा राम्रा योजना रहेछन्। भाइका लागि बाल भविष्य योजना, कमिरे आमाका रिटायरमेन्टका समयका लागि घातक रोग सुविधा सहितको पेन्सन योजना, वाँचि मेरा भविष्यका लागि सेभिङ ग्रोथ प्लान पनि रहेछ। तर पहिला महिना तनखाले सबैको एकैचोटि हर्न सम्भव भएन, त्यसैले अहिले आफ्नो जीवन सुरक्षित गरिकन सुरु गरे।
2: ठिक गरिबा, आफै बाटी सुरु गर्नु पर्दछ। हाम्रा पालामै त यसो गर्नु भन्ने थाहै थिएन, तर तमीहरूका पुस्ताले त समय अनुसार स्मार्ट डिसिजन लिइकन भविष्य सुनिश्चित गरिकन अगाडि बढ्न लागेका छ।
3: बुवाका अनुभव रे मेरो सचेतना मिलिकन हाम्रो परिवार झिक सुरक्षित हुन्छ त, हैन बुवा? सिटिजन लाइफ इन्सुरेन्स, जहाँ भरोसा रे भविष्य सँगसँगै हिटो छ। झिक्क कुरा थाहा पाउनका लागि हाम्रा बिमा गर्ने मान्छे नजिकैका शाखा कार्यालय वा फोन नम्बर 01-5970-217 मि सम्पर्क हर्या।
4: हेरामे दिन रात गरी मरी मरी पैसा कमायो, तर के गर्नु, यो भर नभएको जिन्दगी कति बेला के आपत आइपर्छ थाहै हुँदैन। सोच्दै नसोचेको घटना हुन्छ कि बिरामी परिन्छ अनि सबै पैसा स्वाहा
5: हो। नि बिरे, मलाई नि त्यस्तै पर्यो नि। हेर्न, अस्ति अचानक बुढीलाई एपेन्डिसाइटिस भएर रातारात अस्पताल लगेर इमर्जेन्सीमा उपचार गर्नु पर्यो। यसो के इलम गरौंला भनेर राखेको पैसा सबै सकियो नि। हेर्न,
6: यो रामे र बिरेको कुरो सुन्दा नि मलाई त अचम्मै लाग्छ क्या। यस्तै आपतको समयमा अस्पतालमा इमर्जेन्सी हुने खर्चहरू बिहोरिदिने सन लाइफको सन मेडिकेयर बिमा सुविधा लिएका थिएनौ र तिमीहरूले?
5: के गर्छ र सन मेडिकेयरले?
6: सन मेडिकेयरले सड़क दुर्घटना, एपेन्डिसाइटिस, पेन्क्रियाटाइटिस, हृदय घात, मस्तिष्क घात, विद्युतीय वा अन्य जलन, डुबान, विषक्तता जस्ता 15 दुर्घटना र रोगहरूका लागि आपतकालीन अस्पताल खर्चमा क्षतिपूर्ति दिन्छ। त्यो पनि एकदमै थोरै लगानीमा।
5: यति गरेपछि धेरै राहत हुने रहेछ त।
6: हो कान्छा, अपरजट आउने आपतमा राहत भनेकै सन मेडिकेयर। कुरा बुझ्यो होइन त तिमीहरूले?
5: चिया पनि खाइयो, कुरो पनि बुझ्यो है केटा।

0: ऐ विवेक, ऊ ढ्याङ खास छप्पासोर चिन्छ हो? फुटबल बन्द कर विवेक खन वहाँ कहाँ हुन् वहाँ छप्चारो ना जाओ कहन हुँ
1: ओ हेरो त उहाँ सब भागल पागल कि का हो विवेक खन एक हरी स्कुली फुटबल हेराइ लगो आप
2: जो अलि मेन त सप काटल मुना मुना
0: विवेक जिना क्या सङ्घारु देव शान्त होकर झुर्नी चल के बैठो हमरा तुहान स्वास्थ्य केन्द्र पुगैदी अइ पारस तू घर दादु हन मोटरसाइकल ले खाए कहो त
1: हो विवेक हन यहाँ खुला ठाउँ मा सुताइ यो झल्याङ झुलुङ निकरा खन मुहारी काटीले ओही हन हौदी हेटु फिल्ली मा काटला खल सोइटीबा काटल ठाउँ मा छो चलाई निउड ना
0: अब मै विवेक हन सजिल हिना कै ख वाकर कसके लग पीटी ता धीरे धीरे खोल देतु ओ घरी वो मुन्द्री फेक खा दे हम
1: बिठारो छन् मै यह जाला विवेक का जुत्ता वो मजा धीरे धीरे निकाल दे
3: झूर चसिन सापन का दसाई खतरनाक नी रह समय में जो उपचार कराई से लसे दिखा सपन का कातल मन यहाना फे बचाई से जिठा सपवा कटलक मन यहाना झट्टा से झट्टा उपचार केन्द्र में पुगाई से लसे वही हना भारी क्षति हुना से जोगाई से जिठा
4: विश्वास लगना वो सही जानकारी पाइक लाक लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाई लाक आधिकारिक वेब पेज स्नैक बाइट नेपाल .org में जाख आवश्यक जानकारी लिहे सक जिठा
5: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा र राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौं मिडटाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
6: ८० प्रतिशत रोगहरू पानीकै कारणले लाग्छन्
7: थोपा थोपामा शुद्धता अत्याधुनिक अमेरिकन यूभी र ओजोनेटेड सहित रिभर्स ओस्मोसिस प्रविधिबाट प्रशोधन गरिएको
8: प्योर ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल बोतल तथा 20 लिटर जारमा सर्वत्र बजारमा उपलब्ध छ
6: डेलिभरीका लागि
8: ड्रिंकिङ वाटर एक्वा शीतल
6: टिकापुर कैलाली
9: सम्पर्क मोबाइल नम्बर 9807106772
10: स्वास्थ्यका लागि पानी
11: गरेको भए होइन गरिहाल्नुहोस् यी सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
12: अस्पताल भर्नाको खर्च ल्याब शुल्क र अन्य मेडिकल बिलसँग अब डराउनै पर्दैन सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्सले दिन्छ भरपर्दो स्वास्थ्य बिमा कभरेज न कुनै फाइनेन्सियल तनाव न त क्याशकै झन्झट सिधै तपाईँको ई सेवा एपबाट
11: ई सेवाबाट सहारा हेल्थ इन्स्योरेन्स
12: शिखर इन्स्योरेन्सको सहकार्यमा
11: अस्पताल खर्च सहाराले गर्छ
12: ई सेवा सबै सधैँ सँगै

0: कबू का पिए रही था, कबू पेंसिल ले रही था, कबू झोले फटाका आजी था, का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कॉपी हेरा कई था, कबू पेंसिल हेरा कई था, कबू झोले फटा कई था, बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से नानम था,
0: कहाँ से लन बो, वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गया झोला उडोक में से, वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुड़ झोला आनला बाटी, ना कबू लड़का कहाँ पिए रही थी, ना कबू पेंसिल रही थी, ना झोला फाटल हुई थी, कई एक आनल झोला दस का टस बाटी, ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकट हुई।
1: लिया लिया मैं अभी ही जाइबू रट गया झोला उद्योग में, रट गया झोला उद्योग, झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत, जैसे स्कूल बैग, कैरिंग बैग, फाइल बैग, लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए, पुरान बिगड़ा झोला है मरमर फेंकरा जाए, एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी।
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया, संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।

0: बाबु ए बाबु काल मनीष मेडिकल में जाइस तो
1: मई नहीं जाय वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकल तू
0: वह मारे तो तुहिन वहाँ पठाई तू यहाँ है इ पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर वही से उपचार हुई था वही तोर समस्या फैन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए
1: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहू तब तू मैं अब भी जाय
2: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रफ इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9846774417
0: ला फिर यो गाड़ी ने धोखा दिने भयो जहिले पनि बैटरी कई समस्या बैटरी कई समस्या यो टीकापुर में पनि बैटरी कहाँ पाइएला टेंशन में भयो म त अब
3: भाईलाई थाहै रहिन छ बस ट्रक टिफर जीप कार ट्रैक्टर मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टर में लगने बैटरी पनि सुपट मूल्य में टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्य में पाइन्छ नि
0: ए यो टीकापुर में पनि पाइने रहेछ कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी
3: कहाँ हुनु भाई टीकापुर जमरापारी छ नि संजय ट्रेड एन्ड सप्लायर त्यही पाइन्छ
1: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनी को 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पो में चाहिने सामान सुपट मूल्य में थोक तथा फुटकर रूप में बिक्री वितरण पनि हुन्छ
0: लला दिदीलाई धन्यवाद अब त म त्यही जान्छु
4: हामी कहाँ सियाट एपोलो भी रबर ब्रांड को मोटरसाइकल ट्रैक्टर बस ट्रक टिफर जेसीबी में लगने संपूर्ण साइज का टायर सुपथ मूल्य में पाइन्छ संजय ट्रेड एंड सप्लायर्स जमरापारी टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी
3: संपर्क नंबर 0915604670 र मोबाइल नंबर 9848571828
4: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार तत्काल पोलिक्लिनिक प्रणाली टीकापुर में
5: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या को उपचार आधुनिक औषधि र आयुर्वेदिक औषधि द्वारा गरिने
4: समस्याहरू किडनी र मृगौला को पत्थरी तथा अन्य समस्याहरू
5: महिला को महिनावारी गड़बड़ी को समस्या
4: पाठीघर संबंधी संपूर्ण समस्या
5: पेट संबंधी संपूर्ण समस्या
4: गर्भवती महिला को गर्भ को अवस्था को जाँच तथा परामर्श सेवा
5: ईसीजी सेवा
4: डिजिटल एक्सरे सेवा
5: र प्रयोगशाला ल्याब सेवा
4: फोन नंबर 9844273359 र 9848423359 सत्कार पोलिक्लिनिक प्राली गुम्बा रोड टीकापुर जालपा देवी मंदिर नजिकै

0: आई बुढल्ला सुन्ठो कि नै वानन्दे भोज आगिलि न अब समय एक ठो घर गहना नै हो बनैना उने न पट्टा नि पैना त
1: अदि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशान आटु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
0: तुहार बाटा अस्तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बना कान्छे कि कत्रा सुघर बना कन लबाटी
1: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाई हो जाय कहूँ सामुएल ज्वेलर्स में घर गहना बनाई सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक चिकापुर प्रोप्राइटर तेहरी सिंह सुनार
0: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फिर बना जाए मोबाइल नंबर 98684 41208 और 98486 39261

0: बुका पी रही था कभी पेंसिल रही था कबू झोले फटाका आज था का कना हो बाबा फिर उस बाटिन गटिलो ठाव से झोला आनल से तो लड़का सामान निहरे
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराई थी राहत
0: का हुई कबू लड़का कभी हेरा कई था कबू पेंसिल हेरा कई था कबू झोले फटाका था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चेक थो
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो तो कहाँ टीकापुर मरलक रट गई झोला उद्योग मसे वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कई एक आनल झोला दस कटरस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी नहीं जाबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ल झोला है मरमर फेंकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373
3: घर परिवार में सभी बिरयानी आखिर स्वस्थ रहना स्वस्थ व्यवहार को अपनाऊ पर्यो तर ये हुई सभी एक सुखा हो कहीं कोई बिरयानी कहीं कोई बिरयानी मत दिक्क भैस कसो काल ने छिटो नलग
4: चाइनेजो माइलो कि बर्बर बर्बर कराई रख के
3: हे न साह्रै समस्या पर्यो क्या कहिले के रोग आउने कहिले के समस्या आउने म त हैरान भइसके छोरो उस्तै बिरामी छ स्कूल जान पाएको त्यत्रो दिन थन्किया छ बा त्यत्रै बिरामी सबै हैरान भन्या म पनि पेटको बिरामीले कस्तो हुन्छ भोक लागे हुन्छ खानै सक्दैन
4: तेरी माइला यति सानो कुराको लागि यति धेरै चिन्ता लिनुपर्छ त्यसको लागि त हाम्रो टिकापुरमा रहेको चण्डीबाई मेडिकल स्टोरमा गए त भइहाल्यो
5: हजुर स्वदेशी विदेशी औषधिहरू सुपथ मूल्यमा उपलब्ध छन् साथै समय समयमा विशेषज्ञ डाक्टरहरूको सेवा पनि उपलब्ध छन्
6: सम्पर्क स्थान चण्डीबाई मेडिकल स्टोर ठकरला रोड टिकापुर कैलाली

0: खै आएन
1: अनि देउता मानेनन् के हो फगाउनु पर्छ के हो
0: मन्त्र हान्नु पर्छ होला
2: मैले यता

जयगुरु बाबा घर घर की आवाज, बस्ती बस्ती की आवाज, अपने के मन की आवाज, समुन्नत समाज के लक्ष्य मादेशी आवाज, सामुदायिक रेडियो टीका पर एफएम 101 मेगाहर्ज के विद्युत तरंग मार्फत कार्यक्रम अंताक्षरी अपने लक्ष्य सलाह के बैठक सक रेडियो प्रेमी मई घर श्रोता संग्रह स्वागत के संगे अभिवादन करे चाहे मिशन ओमी के बैठक में बैठ के साथ

0: जानकी गाउँपालिकाको अत्यन्त जरूरी सूचना।
1: नेपालको संविधानको भाग 3 मौलिक हकको धारा 39 अन्तर्गत बालबालिकाको व्यवस्था भएको र बालबालिका ऐन 2075, बाल श्रम ऐन 2056, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन 2074 समेतलाई कार्यान्वयन गर्न गराउन 20 वर्ष मुनिका किशोर किशोरीहरूले विवाह गरे गराइएमा भागे भगाएमा दुवै पक्ष कानून बमोजिम दण्डनीय हुने भएकाले 20 वर्ष मुनिका विवाहहरू विवाह दर्ता नहुने र स्वतः बदर हुने भएकोले आफू सचेत भई अरूलाई सचेत गराई कानूनको पालना गर्न गराउन हुन हार्दिक अनुरोध गर्दछौ। 18 वर्ष मुनिका बाल बालिकालाई निकृष्ट प्रकारको श्रम जस्तै मोटर, ग्यारेज, होटल, कारखाना, गिट्टी, बालुवा, घरेलु कामदार, गाडीमा सहचालक नलगाउन साथै धूम्रपान, मध्यपान, सुर्तीजन्य पदार्थको खरिद बिक्री गर्ने कार्यमा बाल बालिकालाई संलग्न नगर्न हुन हार्दिक अनुरोध छ। यदि कसैबाट कानून विरूद्धका कार्यहरू भए वा गरे गराइएमा कानून बमोजिम कार्यवाही हुने बेहोरा सम्पूर्ण गाउँवासीहरूलाई जानकारी गराइन्छ।
0: अध्यक्ष गणेश चौधरी, बालमैत्री स्थानीय शासन गाउँपालिका जानकी कैलाली।
2: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकलमा जाइस् त?
3: मै नै जाइ, उहाँ आफ्नो अनुहार बिगर्के घर से बाहर नै निकर्छु।
2: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाइदो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाई।
3: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर्के परेशान रहूं, तब तू मैं अब भी जाइम।
4: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐतिबाट
5: मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा।
4: डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार
5: संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 9860071024 ओ 9860476417।

0: बुका पिएर कबु पेन्सिल कबु झलै फटाका आज काकना हो काकना हो बाबा फिर ओस्ट बाटिन गटिलो ठाउँ से झोला आनल से तो लड़का सामान नहीं हेरा
1: ओहो ये बुढ़ा लिख में का हुई थी जरम भर भर बराइटी रहत
0: का हुई कबु लड़का कभी हेरा कई ठो कबु पेन्सिल हेरा कई ठो कबु झोलै फटा कई ठो बढ़िया ठाउँ से झोला लाना नहीं चिक ठो
1: अरे कहाँ से नानम
0: तो कहाँ से लानबो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रट गई यहाँ झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा से गुर झोला आनल बाटी ना कबू लड़का कहाँ पिहरी थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए आनल झोला दस काटस बाटिन ये बुढ़क ढंग कबू पसल छान कर झोला नहीं आना से आकठुई
1: लिया लिया मैं अब भी ही जाइबू रट गई यहाँ झोला उद्योग में रट गई यहाँ झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगाए के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिकल झोला है मर्म फेकरा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोफ राइटर राम प्रसाद रत गैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373

0: रोका
1: के भयो किन कराएको यस्तो
0: दाई यस्तो पनि हुन्छ र 30 दिनसम्म अनलिमिटेड रे
2: इन्सिलमा डेटा पनि कल पनि सबै अनलिमिटेड यति मात्र होइन लायन्स गेट प्लेमा हलिउड र बलिउड मुभिजको फ्री एक्सेस पनि
1: हो र
0: हो नि इन्सिलमा अब मात्र 799 सबै अनलिमिटेड
3: ओहो आजै यो सुपर भ्यालु प्याक एस्ट्रिक 123 ह्यास डायल गरी वा एनसेल एप मगाई लिनुहोस् एनसेल नेपालकै लागि
4: नेपालमा पाजेना बिखा साँपनको विषयमा सुन एक ठोर गरैचा जोन खास कैख रातिक समयमा घर भित्र पैठ सेक्ठ यी कटला से निबाई फे स्याकट तर कटलक पाछ डे भाग जो निचलना कैख सास फ्यार जो निसेकना मेसे लक्वा हुई सेक्ठ और रठ डोम जोन बड़ा रिसाह मेरिक रठ निकर फाट फुले थ डोम साप दिन वा रात दुनुमा देख पर्ना ओ खास कैख संध्या बिहान देख पर्छ निकर कटल से फे लक्वा हुई सेक्ठ ओ और रठ कैदी जातक साप निकर कटल कल से कटलक भाग सुई था वो बड़ा कर रसे बठे था रकत से पाती होकर रकत बहना हुई से था उसे का हमार देशक तराई सबको भूभाग में पा देना बगोप ने न फुनकारना बाधे सा ई सांप दस लाख बेरहमेन कम खेल पा दे था तर हिकन कटाई एकदम खतरनाक रहा
5: बर्खा छाको अनाज बिक्रीना समयमा सापनको कटाई अथवा दसैँको घटना झ्युर बिना कथा बहिया वो औरा प्राकृतिक प्रकोपको कारण सापनको बछारा नासिबेस सापनको दसैँको घटना झ्युर बिना कर्लक पादै
6: झ्युर जसिन सापनको दसाई हानिकारक नि रहर उहो फे यदि सपवा दस डारल कलसे तुरन्त लगभग उपचार केन्द्रमा जा जाइ पर
7: विश्वास लग्ना हो सही जानकारी पाइक लाग ओ लगभग उपचार केन्द्र कहाँ बा कैख पत्ता लगाइक लाग आधिकारिक वेब पेज स्नेक बाइट नेपाल .org मा जाख आवश्यक जानकारी लिए सक्दै था
8: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडियोमोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपालका साथै बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संघको सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मिड टाउनका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
9: अब झ्याल ढोकाको लागि काठ कहाँ पाउने होला काठ पनि सुन जस्तो महँगो के गर्ने के नगर्ने
10: त्यसको लागि के चिन्ता गर्नुहुन्छ भाइ काठ भन्दा सस्तो देखिनामा पनि राम्रो आल्मोनियमको झ्याल ढोका बनाउनुहोस् न
9: ए हो त कहाँ पाइने रहेछ दिदी आल्मोनियमको झ्याल ढोका
10: कहाँ हुनु भाइ टिकापुरमा जमरा पारी छ नि मिलन आल्मोनियम ग्लास हाउस त्यही जानु होला नि
9: अब त म ढुक्क
11: मिलन आल्मोनियम एन्ड ग्लास हाउस जमरापारी टिकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहनदास भाट
10: मोबाइल नम्बर 9848513426 जमरापारी टिकापुर कैलाली
12: के तपाईँलाई किचन वायरिङ र पूजाका लागि कुनै पनि सामग्री चाहिएको छ यदि चाहिएको छ भने ग्रीष्म टेरसलाई सम्झिनुहोस्
13: ग्रीष्मा टेरसमा पाइने सामग्रीहरू नलका नलकाका सामान नलकाका पाइप फरुवा कुटो कोदालो बन्चरो हट ब्याग थर्मस जर्किन पानी तताउने इलेक्ट्रिकल रड भान्साका लागि किचन ब्याग प्लास्टिकको सामान घर वायरिङका सामान पूजाका लागि सम्पूर्ण सामग्रीहरू पित्तलका भाँडाकुँडा ग्यास सिलिन्डर झाडु छाता हाम्रो यहाँ सुफद मूल्यमा पाइनुका साथै भरपर्दो र विश्वासिलो सम्पूर्ण सामान पाइन्छ एकचोटि सेवा गर्ने मौका अवश्य दिनुहोला ग्रीष्म टेरस टिकापुर कैराली संचालक मदनराज देवकोटा स्थान 60 अस्पतालको ठ्याक्कै अगाडि सम्पर्क नम्बर 9849588080
9: बाबु ए बाबु काल मनिष मेडिकल में जाइस तो
14: मै नै जाइ वहाँ अपन अनुहार बिगड़ के घर से बाहर नहीं निकलछु
9: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो यहाँ हेर ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकरन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई तो वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जइबे तो समाधान हुई जाए
14: ए हो दादू अपन अनुहार बिगड़ के परेशान रहूं तब तुम्हें अब भी जाए
15: याद कर भी मनीष मेडिकल हर्टिगापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐटीबाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया पोटो डंडीफोर दाट खुजली भुटला झरना कपार के तालु खुलना डेंड्रप इग्जेमा सोरियासिस कुष्ठ रोग पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर फोन नंबर 9860071024 ओ 9806477।

0: टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना खुल्यो।
1: सिटी भित्तिको आंकिक नमूना शिक्षालय टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र 2083-84 भर्नाका लागि आवेदन खुलेको सहर्ष जानकारी गराइन्छ।
0: शैक्षिक कार्यक्रमहरू
1: डिप्लोमा कृषि इन्जिनियरिङ सिट संख्या 48 जना, सम्पर्क नम्बर 9844-92-88-83।
0: डिप्लोमा इन सिभिल इन्जिनियरिङ सिट संख्या 48 जना, सम्पर्क नम्बर 9858-47-88-90।
1: डिप्लोमा पशु विज्ञान सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9855-06-40-31।
0: डिप्लोमा बाली विज्ञान सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9851-27-39-98।
1: डिप्लोमा वन विज्ञान फरेस्टी सिट संख्या 40 जना, सम्पर्क नम्बर 9848-20-60-41।
0: प्रशिक्षण शुल्क हरेक विषयमा 3 वर्षको जम्मा 54,000 मात्र लाग्नेछ।
1: फारम भर्ने अन्तिम मिति 2083 जेठ 13 गते सम्म।
0: अनलाइन आवेदन दिन चाहने आवेदकले itms.ctvt.org.np मार्फत पनि गर्न सकिनेछ। टीकापुर बहुप्राविधिक शिक्षालय।
2: बुढल्ला सुन्टो कि नै वानन्दे भोज आगिलिन अब समय एक ठो घर गहना नि हो बनैना उनेना पट्टा नि पैना त
3: अधि गहना बनैना त हो दुकान खोस्ती खोस्ती परेशाना तु कहाँ बनाऊ कहाँ बनाऊ
2: तुहार बाटस तर तुहार रामपुरान दिदी कहिए नै सामुएल ज्वेलर्स मसे गहना बनाका अनसे के कत्रा सुघर बनाकन ल बाटी
3: ए ले ले ठीक है बा चल हाली भात वट खाइ औ जाइका हु सामुएल ज्वेलर्स मे घर गहना बनाइ।
4: सामुएल ज्वेलर्स बलभद्र चौक टीकापुर प्रोप्राइटर फेहरी सिंह सुनार।
5: हमारे यहाँ हरेक मेरी सुन चांदी के गौर गहना बना जाए रसायन बिना रसायन के गौर गहना बना जाए वो ऑर्डर अनुसार फे बना जाए। मोबाइल नंबर 9864-41-208 और 9846-39-261।

0: में बाबा को माया कटिला करे।
1: ला फेरि यो गाडीले धोका दिने भयो। जहिले पनि ब्याट्रीकै समस्या ब्याट्रीकै समस्या। यो टिकापुरमा पनि ब्याट्री कहाँ पाइएला? टेन्सनमा भयो म त अब।
2: भाइलाई थाहै रहेनछ, बस, ट्रक, टिफर, जीप, कार, ट्र्याक्टर, मोटरसाइकल लगायत सोलर इन्भर्टरमा लाग्ने ब्याट्री पनि सुपट मूल्यमा टिकुनिया भन्दा सस्तो मूल्यमा पाइन्छ नि।
1: ए, यो टिकापुरमा पनि पाइने रहेछ? कुन ठाउँमा पाइने रहेछ दिदी?
2: कहाँ हुनु भाइ, टिकापुर जमरापारी छ नि, सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर, त्यही पाइन्छ।
3: त्यहाँ त नेपालमा बनेको बेल्टा कम्पनीको 2 वर्षको ग्यारेन्टी भएको ई रिक्सा र टेम्पोमा चाहिने सामान सुपथ मूल्यमा थोक तथा फुटकर रूपमा बिक्री वितरण पनि हुन्छ।
1: ल ल दिदीलाई धन्यवाद, अब त म त्यही जान्छु।
4: हामी कहाँ सियट, एपोलो, भी रबर ब्रान्डको मोटरसाइकल, ट्र्याक्टर, बस, ट्रक, टिप्पर, जेसीबीमा लाग्ने सम्पूर्ण साइजका टायरहरू सुपथ मूल्यमा पाइन्छ। सञ्जय ट्रेड एन्ड सप्लायर्स, जमरापारी, टिकापुर, कैलाली, प्रोप्राइटर केवालाल चौधरी।
2: सम्पर्क नम्बर 091-560-470 र मोबाइल नम्बर 98-48-57-18-28।
5: बाबु, ए बाबु, काल मनिष मेडिकल में जाइस तो?
6: मै नै जाइ, वहाँ अपन अनुहार बिगर के घर से बाहर नहीं निकल छु।
5: उहे मारे तो तुहिन वहाँ पठाई दो। यहाँ हेर, ई पत्रिका में लिखल बा मनीष मेडिकल में अब छाला संबंधी समस्या रहल बिरामी हुकन बढ़िया डॉक्टर होई से उपचार हुई था वही तोर समस्या फेन अस्ते बा जैबे तो समाधान हुई जाए।
6: ए हो दादू, अपन अनुहार बिगर के परेशान रहूं, तब तो मैं अब भी जाए।
7: याद कर भी मनीष मेडिकल हरटिकापुर में यह जेठ 16 गते शनिवार के दिन छाला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर ऐटी बाट मनीष मेडिकल हल टीकापुर में पुरान से पुरान अनुहार में रहल चाया, पोटो, डंडीफोर, दाट, खुजली, भुटला झरना, कपार के तालु खुलना, डेंड्रफ, इक्जेमा, सोरियासिस, कुष्ठ रोग, पुरान से पुरान ठीक नहीं हुई घाव, खतीरा ओ यौन दुर्बलता के उपचार होती रहल बा। डॉक्टर ऐना दिन जेठ 16 गते तेसरो शनिवार। संपर्क मनीष मेडिकल हल अस्पताल रोड टीकापुर। फोन नंबर 98-600-71-024 ओ 98-046-77-417।

0: बिजापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर आने बारे को सूचना। टीकापुर अस्पताल में छाला तथा यौन रोग विशेषज्ञ डाक्टर प्रकृति बराल हरेक हप्ता को सोमवार और बिहीबार बिरामी जांच गर्न आउनुहुने भएकोले छाला तथा यौन रोग संबंधी समस्या भएका बिरामीहरूले विशेषज्ञ सेवा लिन आउन हार्दिक अनुरोध गरिन्छ। टीकापुर अस्पताल टीकापुर कैलाली।
1: आई हो बड्डो घर कहिया सिज्जैबो पाछसे सुरु करल मने घर सिज्जार सेक्ल।
2: अरे का करुरी बुढिया कठुआ खोजत खोजत परे सान हो गेल बाटु मिलबो मिलबो निकरत का कैन हो का
1: मिस्तरान वर्जन हुकना घर हेरो ना अट्टा सुगुर बनैल बाट आल्मोनियम के मुआका द्वार लगाक टुफे ओस्ट बनी हो ना ओट्टफे पटानी हुइन कि गुंगुआ बुढो हो न कबु कहुरा घुम जाए त थाहा पाए।
3: यूपी भीसी ब्रांड के मौका द्वार पार्टिशन स्टील की रेलिंग आगे पानी हो घाम से नहीं बिगड़ना खोले बेरो बंद करे बेर आवाज नहीं ना विशेषता हुई मौका द्वार पैना के संगे कठुआ के चौखट में अल्मोनियम के पल्ला हो द्वार फे लगा दे।
2: मिलन अल्मोनियम एंड ग्लास हाउस जमरा के उपार टीकापुर कैलाली प्रोप्राइटर मोहन राज भाट मोबाइल नंबर 9848513426।

0: समुन्नत समाजका लागि समावेशी आवाज सामुदायिक रेडियो टिकापुर एफएम 101 मेगाहर्ज।
1: भ्रष्टाचार करू या मनन खुल्के विरोध करी, भ्रष्टाचार रहित सुशासन युक्त देश निर्माण करक लाग सक्कु जाने सहयोग करी। अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगकै कार्यालय महेन्द्रनगर कञ्चनपुर से जनहितमै जारी सन्देश।

0: बुका पी रही था कभी पेंसिल ले रही था कभी झोले फटाका आज का कना हो बाबा के ओस्ट पाटिन गटिलो ठाव से झोला अनला से तो लड़का सामान नहीं हरे।
1: ओहो ये बुढ़ालिक में का हुई थी जलम भर भर बराई थी रहत
0: का हुई कभी लड़का कभी हेरा कई था कभी पेंसिल हेरा कई था कभी झोले फटा कई था बढ़िया ठाव से झोला लाना नहीं चिकठो।
1: अरे कहाँ से ना नाम था
0: कहाँ से लन बो वो तो कहाँ टीकापुर में रलक रख गई झोला उडोक में से वहाँ झिंगरान दीदी कटरा सुगर झोला अनला बाटी ना कबू लड़का कहाँ पी रही थी ना कबू पेंसिल रही थी ना झोला फाटल हुई थी कहिए का आनल झोला जस कटस बाटिन ये बुरह ढंग कबू पसल छान कर ना झोला नहीं आना से आकर ठुई
1: लिया लिया मैं अब नहीं जाइबू रख गई झोला उद्योग में रख गई झोला उद्योग हमारे यहाँ ढेर डिजाइन के झोला मिलत जैसे स्कूल बैग कैरिंग बैग फाइल बैग लगेज बैग लगा के ढेर डिजाइन के झोला ऑर्डर कर अनुसार से बना जाए पुरान बिगड़ा झोला है मरम्मत करा जाए एक चोट सेवा करना मौका जरूर देवी
2: प्रोपराइटर राम प्रसाद रतगैया संपर्क मोबाइल नंबर 98484223373।
3: टीकापुर नगर पालिका को सूचना नगरपालिका भित्र संचालित व्यवसाय दर्ता नवीकरण गर्न गराउनुका साथै दर्ता नगरी सञ्चालन भइरहेका व्यवसाय अनिवार्य रूपमा सम्बन्धित ओडामा दर्ता गरौ
4: भवन निर्माण मापदण्ड 2072 अनुसार नयाँ घर निर्माण गर्दा घर नक्सा पास अनुमति लिएर मात्र निर्माण गरौ
3: यस टीकापुर नगरपालिका कार्यालय वरिपरि लगायत नगर क्षेत्रभित्र व्यवसाय गरी बसेका व्यापारीहरूले पसल अगाडिको सार्वजनिक जग्गा बाटोमा टहरा लगाई पसलको सामग्रीहरू राखी व्यवसाय गरिरहेको र त्यस्ता कार्यहरूले सड़क दुर्घटना निम्त्याउन सक्ने भएकोले त्यस्ता कार्य तत्काल बन्द गरौ
4: नगर क्षेत्रभित्र रहेका घुम्टी ठेलाहरू तथा पसलमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका व्यापारीहरूले आफ्नो पसलका अगाडि जथाभावी फोहोर गरी उचित व्यवस्थापन नगरेको देखिएकोले यथास्थानमा फोहोर व्यवस्थापन गरौ र गराउ टीकापुर नगरपालिका नगर कार्यपालिकाको कार्यालय टीकापुर कैलाली।

परमसुगतम केवलम ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतम गगन सदृशम तत्मत्सेदिलक्ष्यम एकम नित्यम विमलचलम सर्वाधिसाचीभूतम भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तुम नमामि भावातीतम त्रिगुणरहितम सद्गुरु तुम नमामि। विक्रम संवत 2083 साल